वो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है। बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी।

वेलकम वेलकम वेलकम टू भारतीय संगीत द स्वीट मेलोडियस म्यूजिक फ्रॉम इंडिया एंड योर होस्ट इज मुरली कृष्णा. सो लेट अस स्टार्ट द शो एज यूजुअल विदाउट एनी डू एनी मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम विद ए गणेश भजन एज यूजुअल. द गणेश भजन आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू टुडे इज संग बाय हरिओम शरण. लेट अस लिसन टू दिस.

कि पहला पहला प्यार फॉर द सीआईडी वाज पिक्चराइज्ड ऑन शीला वैज एंड श्याम कपूर. शीला वैज मेड इट ऑलराइट इन द इंडस्ट्री बट श्याम कपूर वाज सीन इन ओनली वन मूवी. बाय द वे ही वाज गुरुदत्त वन ऑफ द असिस्टेंट्स. लेट्स लिसन टू द सॉन्ग.